0: राधे भगवान श्री नरेन महाप्रभु जी की
1: जय हो।
0: श्री सियालकुरी जी महादेवा की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
2: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।

बोली श्री प्रणाम भगवान की जय। सदेवा पुरी समदेवा की जय। श्री हिंदू धाम समर मन वनम जी सर गुरुदेवा की जय। विश्व गुरु मा मनलेश्वर परमांश स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेवा की जय।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय, श्री देवपुरी समादेव की जय, श्री रेवत सिंह जी की जय।

0: परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhya Mahamalesha Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में, होम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
2: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwar ji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Swami Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: Aur mujhe aisa lag raha hai कि स्वामी जी की ये साधना, ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी, आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
2: And he thinks that this tapasya, this kind of sadhana will bring millions of people in the future.
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
2: In Indian tradition, there is a great importance of guru.
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
2: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य इन हिज कमेंटरीज,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
2: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु।
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
2: नोबडी सो गॉड,
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं।
2: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस।
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं।
2: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म.
2: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति.
2: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग.
2: And third is the satsang with

तत्तनुं रामानुजं संभजे। ब्रह्मानंद सहोदरी श्रुतिमयी सद्वल्लरी पावनी पीयूषां बुद्धिमंथनोद्भवरसा मुल्लासनी माधवी श्रीमद्भागवताख्य धाम बसती राशेश्वर प्रेयसी पंचाध्याय लसत तनुर्विजयते राशेश्वरी राधिका।

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: So this is like when Vishwa Guruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: Guruji ne jo aapko mantra diya hai, upadesh diya hai, aur apna lakshya bataya hai.
1: So whatever the Vishwa Guruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain.
1: This is called dhirti.
0: Kshama,
1: endurance, patience.
0: Koi chhota aadmi agar koi galti kar jata hai to bade aadmi ko उसको क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा है।
1: द थर्ड स्टेप इज नो नॉट स्टील, वॉट एवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव, दे शुड नॉट स्टील।
0: अपने को नियमित करना, उस पुस्तक का नाम है नियम।

0: control ourselves is called niyam.
1: Niyam. Yam apne ko rokna.
0: Yam is the book which tells us how to stop ourselves.
1: Ka arth hota hai jo yoga ke liye kaha hua yogash chitta vritti nirodha wo niyam ho gaya.
0: So niyam is this first line that when your thinking stops, when your
1: niyam means kanun ko pas palan karna, usko dharan karna, usko apne jivan mein lagu karna.
0: To follow the laws and rules, to put it in your life, this is called niyam.
1: Yam niyam ke baad mein asan hai.
0: After that is yam.
1: Body ko set karna, body mein jo point hai, un pointon ko highlight karna, aur उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं हमारी बॉडी ईयर से चल रही है उस ईयर को शुद्ध रखना इसका नाम है प्राणायाम और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना यह है आसन.
0: So the third book, Asan, tells us how to keep our body clean and how to make it strong and so on. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
1: Asan se aapki body shuddh hoti hai. Aur isi prakar se pranayam se aapke andar paanch ear hai. वो पांच ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए सामान की मटेरियल की सामान की.
0: So like the asanas purify the body, make it clean. The same way the pranayam does for all these five pranas, five types of air, which then service our body properly.
1: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है सॉर्ट एंड स्वीट. समझ गए? प्रत्याहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
0: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वनसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वनसेल्फ इनसाइड.
1: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
0: So nowadays in the world it's very famous, the yoga, it's only mentioning just asanas and pranayamas, what is good for the body, but yama and niyama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
1: Asan pranayam ke baad pratyahar hona chahiye, lekin aaj ke yogi jo hai vyapar shuru kar dete.
0: So after the asana and pranayam, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
1: Ye mera toothpaste hai, ye mera burush hai, ye meri vaseline hai, ye mere skin cream my.
0: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
1: Ye mera chamanprash hai, ye mera glucose hai, ye mera wo hai. To pratyahar jahan short and sweet होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया, इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
0: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: गुरुजी, ये बैठा
1: नहीं. बाबा रामदेव जी. कहाँ? अच्छा वो हमारा चेला है वो. इनको पता है सबको. तो उसमें ये है. अब इसके बाद में होता है

0: धारणा, धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं।
1: So Dharana is the next book, fifth book, which says about it's our own capacity, our own capability and so on.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला है। धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला। ओ भाई,
1: so you look,
0: संन्यास
1: what
0: लेगा?
1: Means Dharana?
0: नहीं, no धारणा।
1: Dharana means actually also concentration. So you look at my the Dolak person if he wants to have sannyasa. So he said no, thank you.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं।
1: Somebody told me you are a great person. You cleaned and purified, and you cross over 21 of your family lineage. All 21 generations crossed over this sansara. You are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी सन्यास ले लो। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, no no no no no.
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, no, no, no, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है।
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है। ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है, वो ध्यान business बन गया है।
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है। लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: So like this now, this meditation classes and so on, they are there just to make it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूंगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: सो इफ आई टेल यू प्लीज टेक द मनी फ्रॉम मी एंड देन आई गिव यू 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, विच वन यू विल टेक?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: फ्रॉम ऑल ऑफ
0: 500 का ना, 500 का?
1: फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू विल टेक
0: 500 का, ठीक है ना?
2: 2000 का
0: बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे, 200 का नहीं, कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती
1: है. So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्तोपि दुखेन गुरुणा न विचालयेत. तो जिस

0: आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप दो घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता
1: है,
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि. हमारी किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्टैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्टैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते हैं.
1: समाधि इज व्हेन यू feel only yourself, there is no connection with your body, there is no connection with this world, you have connection only with yourself.
0: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प.
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहाँ पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है, और जहाँ की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं. अहम ब्रह्मास्मि.
1: So in Nirvikalpa there is neither disciple, there is no guru, they both merge into the God. Aham Brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई. अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं. 9.
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना. नहीं, हमने सुनना चाहते.
1: So first
0: श्रवण भक्ति.
1: So first is listening. So listen only what Vishwa Guruji says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो. ये कीर्तन है.
1: कीर्तन और रिमेम्बरिंग इज दैट यू रिमेम्बर ओनली द वर्ड्स ऑफ विश्व गुरु जी, नथिंग एल्स.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं. ये स्मरण भक्ति है.
1: रिमेम्बरिंग द स्मरण भक्ति इज व्हेन यू

0: Remember, only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
1: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
0: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
1: पूजा सम पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
0: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
1: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
0: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next
1: दास्य, सेवक, शिष्य, उसको दास्य भक्ति कहा गया है.
0: Next one is serving, to serve the Guru and God.
1: दास, अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
0: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु.
1: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
0: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप, इज व्हेन you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
1: Hamare sanatan dharma vedic marg bhakti marg mein dheere dheere dheere dheere arjun jab krishna ke nazdik gaye to bhagwan ne unko phir das ne rehne diya, sevak ne rehne diya, unko sakha bana diya. Sakha mitra,
0: so like
1: friend.
0: When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
1: Iske baad mein atma nivedan bhakti aati hai. Bolo, Maharaj ji, ab main aapke saath hi kal subhere chala chalunga. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. इसको कहते आत्मनिवेदन.
0: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट.
1: वो आत्मनिवेदन है. आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं.
0: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग.
1: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका.
0: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
1: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
0: Seven books.
1: उसमें पहली books क्या है, सुविच्छा. क्या है भैया सुविच्छा? सुविच्छा क्या है, बोलो गुरुजी. अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम कहाँ मना।
0: First book is Sva-Icha or the own desire, and you say, Gurudev, I want to live with you.
1: Acha, ab
2: dusra. Most welcome. I'm not stopping you. I have no problem. Come.
1: आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं. अच्छा, अब बोलो, गुरुजी.
0: गुरुजी.
1: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास.
0: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
1: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है, उसको कहते हैं विचारणा. उसको क्या बोलते हैं?
0: विचारणा.
1: उसको विचारणा बोलते हैं.
0: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
1: Tan Mansa. Iske baad mein jo hai, pustak hai, Tan Mansa. Guru se jab vichar milta hai, to jaise badi tanki mein se, pipe mein se paani aakar ghar ki choti tanki mein aane lagta hai, aise guru ka gyan shishya mein aane lagta hai. Isliye usko Tan Mansa bolte hain. Any connection, badi tanki se choti tanki mein connection.
0: So the next one is Tan Mansa. When the guru, the knowledge of the guru slowly starts to be transferred to the small pot of shishya, of disciple.
1: Sattvapatti. Ab chaturthi jo hai, gyan bhumi suvichha syat. Prathama samudhairta, vicharana dutiya syat, tritiya tanumanusa, sattvapatti chaturthi syat. पंचमासन से आत्म का पदार्थ भावनी षष्टि सप्तमी त्रियगास्मृतम. तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते.
0: Sattvapatti is the next step when in guru and disciple there is no difference in their thinking and everything.
1: Padartha bhavani kehte hain. Padartha bhavani. Jaise aapko chai yaad hi nahi aave, coffee yaad hi nahi aave, chutney yaad hi nahi aave, rasgulla yaad hi nahi aave, ice cream, phir 15-15 injection.
0: The next step is when you even don't remember, you know, neither any sweets or anything, any food you like. There is nothing there.
1: Padartha bhavani ka arth ye hai ki aapke samne stone ho aur aapke paas mein jo hai gold ho, is dono ko aap barabar samjhe, isko padartha bhavani bolte hain.
0: Padartha abhav, the detachment from the any things, is like you can have a stone or you can have a gold, for you this is equal.
1: Nahi pehle asanshakti. Asanshakti ye hai, asanshakti isko kehte hain ki kabhi koi relation mein aapke mother hain, father hain, brother hain, wife hain, children hain, koi bhi hai, inme aap guru ko chhod kar inme aapke man ka nahi jana, usko bolte hain Asan Shakti.
0: Asan Shakti is when you don't think and then you go back to your family, to your brothers, sisters, wife, parents and children.
1: Ab to hamara ek hi nara, na hum kisi ke, na koi hamara.
0: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
1: Padartha bhavani, jahan sona mitti barabar lage, koi bhi upalabdhi, koi bhi prapti, sansar sambandhi, jo apne ko prabhavit nahi karti ho, usko shastra ne asan shakti kaha.
0: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things, from this world, like gold and all these things.
1: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था परीक्षित को तक्षक काटेगा और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा ईयर, वो क्या ना बोलते उसको,
0: सांप, सांप, स्नेक,
1: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
0: So like in the in Bhagavata there is this a curse of a king.
1: इसको पदार्था भाव नहीं बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस न हो, डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक नचेनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार्ग. आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है वो भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है. ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
0: So this is that book Padarthabhav. There is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
1: Turiya avastha usko kehte hain jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho. और शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
0: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट. इट डजंट अट्रैक्ट.
1: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया.
0: सो इन आवर लाइफ्स from the starting point we have to pass all these tests and we have to convince the guru and the god that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This acharya ji is telling to us that we should success, we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
1: Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti.
0: Chidip Narayan Bhagwan Ki Jai. Devadi Dev Deveshwar Mahadeva Ki Jai. Indudaran Samrat Smarav Nanji Bhagwan Ki Jai. Rajguru Mahamandaleshwar Acharya Mahamandaleshwar Shokanand Bharatiji Maharaj Ki Jai.

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव माधवानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य स्वीदनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है।
जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।

0: से कुछ लाने ट्रैक्टर बांध करके इस कार्य के लिए भेजना है
1: और नहीं करा
0: जितना भी हो आप तो अभी तो घोषणा नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे हम भी वहाँ भिजवाए आपने कॉल करें. ठीक है
2: ठीक है. So you want me to appeal to my okay.
0: In America.
2: Okay.
0: To Yoga and Delight Foundation in Austria.
2: Okay. Yoga and?
0: Delight Foundation Austria or India.
2: Okay.
0: India. Yoga and Delight.
2: Yoga in.
0: Yoga in Delight.
2: Yoga in Delight.
0: Foundation.
2: In Austria.
0: No, New Delhi.
2: New Delhi. Friends, Swamiji. Swamiji. DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to yoga in daily life. It's Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
0: In rupees?
2: Yes.
0: Thank you. Ke dollar?
2: Did I say? Yes,
0: yeah. Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahmarishi ji aaiye aap and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi, P. Thawla, Nagor. Kashmir.
3: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण. सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है. क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा. तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे. 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख ईट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है. 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है. 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के. हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती महाद्वानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमंश योगी राज श्री महेश्वर जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर, क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मा नंद जी महाराज के मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मा नंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी महाराज। धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी

आसन प्राणायाम, नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपाल भाती, ये तो छोटे सा है कुछ भी। इफ यू अनाउंस द योगा रिप्रेजेंट इन प्रॉपर वे व्हाट इज द योगा, देयरफॉर ऑल माय डियर्स राउंड द वर्ल्ड हु इज लिसनिंग मी एंड ऑल अदर योगा टीचर्स एंड सेंटर्स, प्लीज राइट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाई वी आर क्वेश्चनिंग देम, व्हाई डिड यू रिमूव द सिंबल ओम फ्रॉम योगा। वन वे दे सेड इट इज द साइंस ऑफ योगा इज बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। सो वेर इज द पोस्चर इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, वेर इज posture is representing the consciousness, where the posture is compared with the postures with the mind. Physical, this is called yoga vyayam, and through this yoga vyayam certain systems in the body will be harmonized. But yoga is not only the exercises, yoga is beyond that. And being the motherland of the yoga, it is the first duty of the government of India to represent yoga in better way. Don't be fearful. Don't think the world will say this is a Hindu. What have you against Hindu? What have you against Hindu? बताइए क्या हिंदू धर्म के अंदर कोई कमी है? क्यों आप डरते हो? हम ओम लिखेंगे तो कहेंगे धर्म हो गया। अरे वाह कायरो, तीन सजावत देश को सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर और करूर। तो क्या आप करूर हो गए? आप घबरा रहे हो? माता जने तो भक्त जन के दाता के, नहीं तो रहिए बांझ मत गमाइए नूर। तीन सजावत देश को सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर करूर। अगर आप अपने आप को कायर समझते हो तो कबरा, इट इज ए संप्रदायिक। क्या संप्रदायिक कहते हो मेरे बच्चों? हिंदुस्तान सभी धर्म की मातृभूमि है, सभी धर्म योग से निकला है, योग किसी का धर्म नहीं। Therefore, I would humbly request respected Prime Minister of India, श्रीमान मोदी जी, please do not remove the Om from the logo which आपका the Ayush Department has destroyed this symbol. In whole world, I travel 43 times round the whole world. There are many, many yoga centers, many, many from many sadhus, and someone who have no sadhu there, they even didn't see the guru. They didn't come to India, but they have a yoga center, yoga studio, and they have a Om on it. And everywhere who is practicing Om in the world, maybe this Muslims or the Christians or Hindus or Yahudis or anyone, first they will sit in meditation and chant, Om Akar Ukar Makar Para Pashyanti Bekari. Ask them why they chant the Om. Because when you chant the Om, then body, mind, soul and Atma becomes one. Scientifically proved. Therefore, my many, many yoga disciples, many, many other yoga centers which is not connected with yoga and daily life, but they are saying to me, Swami

0: वो ही गुरु गम साइनी है, वही गुरु गम निशानी है, दैट मिस्टेक. सो दैट इज विल हु विल रियलाइज दैट हु अंडरस्टैंड एंड गुरु वाक्य एंड अंडरस्टैंड व्हाट गुरु देवी.
1: И это сможет реализовать лишь тот, кто понимает Гуру Вакью и понимает, что такое Гуру Дев.
0: Any doubts, anything, you are out.
1: Любые сомнения, что угодно, и вы уже...
0: Вохи Гуру Гам Сен Хэ. That one who understands the hint of the Guru Dev.
1: Тот, кто понимает намек Гуру Дев.
0: Свами Дип Сант जन सूरा चेतन चेत चेतानी है महाप्रभु जी से
1: महाप्रभु जी сказал
0: स्वामी दीप संत जन सूरा महाप्रभु जी से दैट संत दैट साधु दैट योगी इज द वॉरियर्स व्हाट यू कॉल द हीरो
1: тот साधु герой
0: यू आर द हीरो व्हाट दे कॉल There is another word, the warrior who is successful. The word I forgot.
1: Victorious.
0: Yeah, victorious, but victorious too little.
1: Okay. Победитель,
0: that's one word.
1: Недостаточное слово. Махавир.
0: No, but that's Hindi word.
1: No,
0: okay. स्वामी दीप संत जन सूरा चेतन चेत चेताना है दैट वन इज चेतन अवेकन
1: तोत चेतन प्रबुद्धन
0: चेतन चेता ही कैन आल्सो अवेक अदर्स
1: यान मोस्ट प्रबुद्धाय दश द्रुगे
0: चेतानी है दैट मास्टर कैन लीड दिस योगा निद्रास एंड ही कैन वेक यू अप इन टू द Awareness or the consciousness of the Samadhi.
1: Тот учитель может вести йога-нидру и привести вас в осознанность, в самадхи.

0: ज्ञान की बुद्धि लगाई रथ में, एंड इन दिस कोच देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग.
1: Not your seat.

दीप नारायण भगवान की, देवपुरी समादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। इन साधना टू क्रिएट सात्विक वृत्ति, द वृत्ति व्हिच इज इन पतंजलि इट इज एट योगा चित्त वृत्ति निरोधः। द फर्स्ट इज सेड अथ योगानुशासनम्। Yoga begins with discipline. If there's no discipline, then your practice will not be successful. So, atha yoganushasanam. Which kind of discipline we should have?

ही रहे सुखी आरी रे, ओम की रचना सारी रे, ओम की रचना सारी रे। एवरीथिंग ऑल व्हाट इज विजिबल अनविजिबल हियरिंग टेस्टिंग फीलिंग ऑल दिस इज ओनली फ्रॉम वन फ्रॉम द ओम द साउंड। ओम इज द क्रिएटर, ओम इज द होल यूनिवर्स द साउंड दैट हैज ओम हैज नथिंग नो फॉर्म टू सी निराकार निराकार हैज नो आकार। ज्ञानी जाने भेद सोही रहे सुखियारी रे। दोज वाइज पीपुल हैव अंडरस्टूड द ओम देर विल बी ऑलवेज हैप्पी सुखी बिकॉज दे विल नो व्हाट इज द ओम। ओमकार पर ब्रह्म रूप है ओमकार। इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ इज द फॉर्म ऑफ द ओम देन इट इज द ब्रह्म ऑनली ब्रह्म इट हैज नो फॉर्म नथिंग इंटायर यूनिवर्स ऑल द हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट ब्रह्म। यू कैन से डिफरेंट नेम इफ यू वॉन्ट टू से इन क्रिश्चियनिटी यू कैन से द होली फादर I don't know if it is that. Muslim said highest is Allah, nothing is else. Yeah, so the Gandhi wrote one very nice song. Ishwar Allah tera naam sabko sanmati de bhagwan.

ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर एंड अल्लाह इज thy नेम ओ लॉर्ड, गिव गुड थॉट्स टू everybody. Who say that? Gandhiji. ओम किसाया नहीं धूप है, ओमकार सब रूप सदा ही। ओमकार, द ओमकार, द ओमकार हैव नो शैडो। इफ यू सी द शैडो, देन फ्रॉम हुम इज द शैडो? देयरफॉर इट इज अ नो शैडो। सो ओमकार हैव नो, नहीं छाया नहीं धूप है, नाइदर द सन, नो लाइट, बिकॉज लाइट शुड बी फ्रॉम समवन, सो दैट इज निराकार। सो नाइदर द शैडो नाइदर सनलाइट। ओमकार नभ रूप सदा ही, एंड ओमकार नभ रूप सदा ही। नभ इज द स्काई, दैट इज द ओम ऑल द टाइम्स ओनली, ए वेरी क्लियर स्काई ओनली, नो ऑब्स्टिकल, देयर इज नो एनी, इवन द क्लाउड्स आर नथिंग, प्योर प्योर नबरूपा, दैट्स कॉल्ड नबरूपा। व्हाट इज योर फॉर्म, व्हाट इज योर आत्मा? माय आत्मा इज नबरूपा, जस्ट लाइक ऑल। एंड वेयर विल यू, हाउ बिग आर यू, व्हाट इज योर कलर? गो इनटू द नभ एंड यू विल सी एंडलेस एंड एंडलेस दिस आत्मा। Rosumis, understand? No. Who did not understand? What is a nabha? Sky. Empty sky, everything. That is thy atma, thyself. That is the om. Omkar nabha roop sadahi he nira dharire. That one, Om, is not based on anything. It is not that we are sitting on the earth. But Omkar has no any base. It is everywhere, equal and same. All is existing in that, but he is in no one's. So it is with all and no one is all. Om, Om, Om. Omkar की त्रिगुण माया, ओमकार की त्रिगुण माया, देयर इज थ्री गुणास, विच वन? सत्व राजस एंड तामस। सो ओमकार की त्रिगुण माया, दिस इज ए माया ऑफ द ओमकारा, because in this everything is happening. So, but also is a, you cannot touch, you cannot hold, you cannot. So sattva, rajas and tamas, this all entering in our body, then you will see how, what it is happening. Omkar mein jeev rahe sab, ओमकार, ओमकार में जीव रहे सब देहधारी रे। इन दैट ओमकार लिविंग ऑल द सॉल, ऑल जीवास एंड ऑल हु हैव बॉडी, दे आर इन द ओम। इवनिंग वी विल डू कंटिन्यूली, ओके? सो अगेन कम टू द

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठात एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मारदानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छा

0: मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Delhi Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Delhi Life Foundation, Austria or India? Okay. India. Yoga and Delhi Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Delhi Life
1: Yoga in Delhi Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to yoga in daily life. Yoga in Delhi Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: De paise.
2: Among us,

0: sitting on Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagor. Catch me there.
1: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु, और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा, हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगरोगे। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में,

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है।

से ईश्वर की तू ध्यान ओसी का धरे प्रार्थना करे प्रार्थना करे जगत के।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्चंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी

श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।

श्री देव पुरुषा महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।

0: श्रीदीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की
1: जय
0: यमुना मैया की
1: जय
0: नर्मदा मैया की
1: जय
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी दीज आर द होली रिवर्स।

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरट है। Mm-hmm.

0: महाप्रभु जी की जय हो। श्री सियालकपुरी जी महादेव की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेव की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।